0: ठेके यिगदी यावस ठीशा चुजो देर तोयबदा अचा चो यांस लापचे नाल तागा शो आ तिंगा चो ठी मारबे तुजु चो क्योगला बेजी मी युग सील लापच थें रिंगी
1: ने थाग संग बे रिंगु युबे सुरच यां तिंदे युबे ना वाश तु
0: हे हे ची रां युजे गिन्य युदेम तिटे कतु छाबरे
1: चेन कंडे सियाव रे
0: रां के उने चेन तिटे सिलोग रे तिंगा लापचे सहना गचे दे जो शिबु क्यों ने पितु इने लोग तुन चेबे चेला साय यो मार संतु सेमनार किप क्यों ने यो मार शी
1: थंदो
0: थंदो ए ता शे सा
1: रां मी ल तिंगे चे मा शिम तिटे कंडे रे
0: ने दी मीं ल मांग दा तुन बस आ शिंग युबे
1: तिंगी बा मांग चा खा रे यो रे
0: ना तंग रां दा शें तुन तु चीवे लो तुन चेबे चेलो रां खा चुन ये बा Chiyue Lop tun chie zabe chie le rang hua shu nian ba
2: Pa yu lo me zhe
0: Ya, ti guang le rang shanghai liya dian yin si du wa
2: Dian yi dian me zhe
0: Kari yi ne, su jia mingi dian yi rbe Ma dong jia shu kar ju Pa yu lo ne kar ro zhe Ngan zun na le pi ge le hu yu zang
1: 对对，皮革总还要给顾客不相信。俺能打呗，今年该怎么吃呢？怎么吃呢？让他最最要嘛是。啊，是让他去，对，你要多加注意。啊，这能多吧？啊是，啊是，啊是。七月，长谷县呢，高山镇一镇地，江米连锁，俺让老伯上去的，江米给我们乐死。
0: 让他能给这肯定需要个买三百块买就是啊。你得呢，叔叔能做工资透明度。苏家明来呢，让给俺们乐不起。
1: 让你歇歇还久着。
0: 没得要女娃钱呢，俺也怕说不得说一个特别去住住院。
1: 徐天，让你来不躺大面不吃不着。
0: 你来不吃着多。
1: 赵三来我面特别面。
0: 让他来吃不着，俺来不躺大面就是。伢赵三来我面特别些是，让俺三家月啊。
1: 天明苏家明过来歇歇还吃个。
0: 你歇歇过，让给你歇歇过。
1: 让给歇的，你歇不，这不是呗。
0: 这。

0: ओके काम सोया द नदी नो लु दिया त सो द छोंबा खिजे तोमे के ता तिनी समशो छेन बो युला चाचिन जेजो पा ना ला पा छपरा सिन न बतन थों जे पुदा तिनी जे न कोसो ला पा गुठु छिन
1: थाथिन की खोजे खोजे जिमजो थी रंजो की खेंदेन थुले ला जमनी सजो खा के छोंबा न्यामले छेजो रो तेबु जुम मा से रंजो की जिमजो दिले थुन बे कुगप थमजिन छे दे पेगे तोंजो रो थुनजेन जा रु युला पेगे पुले थुन सो मा बो खोजे खोजे दिरे कु तेवे शिगे छेवे छुमजे थो द्वन थो ग्यो रो कुगप ग्या छिन शि रंजो जों छोंदेन थिन न्यो जों गुबे लेंजो की जुरेन बा सान की जोंगु गे जी खोजे खोजे जिमजो की तेबु दी रंजो की खेले ला थुन सो जिमद्वन था गेजे खेले ला जिदु छेबे कुगप जिन युला गेजे छोंबे पेगे केंदेन थुन सो ला ग्युंगन था न्यामलेन न्यामले छोंशा छोजु सो ला रुरम छेदी सदु केंदेन थुन सो केनान था गेजे छोंजे थो द्वन थो ग्युरो थुनजे या जारु ये जे सोम शे जिजे नि जुनी निन जिलु नि दो नि सरु लु रंजो जों की निगु नि जें की छेगु सिरों छिंग जें छंदु छोंजे रे थु बेव शे छेगु थे रंजो जी थुने पेगे तो वे जोने ला थंबुर मिबा था तिरब जें की थुने मला की नेठि छेदी वंजुरु छोंदु जो था थुने मुजे छुमे छोंदु छोदे खेले जेदु नेबि छे शे जोने वंजुरु छिगे पेगे लोंगा जें जोंगे रिंगे थुने पेगे तो वे छरगुए था छोंगु मा जें की सिजु सरशु शेंदे मिन देन छु था सिजा की छिदेन छिदब छे जिगदु थो केबरा छेब मा से जोंग नंगु की दिवे मुइ जे छेबा देन छांग ने लेला छांग वे केबरु रो सिजु मोजे छे शि छिगु नंग ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས kunzin shuen ba sunam ngu zhub ki. Kele le ngu zhe shibshu zhugyu ma se, shende mi na le du che bar ya ngu zhe gyab gyuru che yu yin. Nga zhu ta ten zhe tu ki du mu nam chan ta, shende mi ne nam chan la che nga shibshu zhuba ta chebji. Pyo ki tun le rinpo ri ki kachu le ming ne, ngu zhe tun zhe sar du che di, ma ngu ko zhe ta, tun le ko zhe nyam zhe ting sab yon gyuru ram di che yu yin xie sum shi. Je su mo tu, tun le ki che tun zhe du chong du ta, nebi ngo zhe chui mu, zhong qi kile zu sayu ngu su da guru cimri qiba su, gen den qi gu ma mu qi jik ji nye du ngang bie ne, nye gu nye zhen le ge pen zhe qi ru tong yu ima shi. Chongqing lu yun jik ju ru nam bie, zu zhun le zhe cobo cayu gong si lian zin jin dom, xu wan bin ki. Pyo yi long a zhen zhong e tun le char gui ka se wa ta, sa du ken den tun le le ming se ki le zhi dian du la, zong gu si ju ta, xin den mi ne le la cha chan wa ta, pe ge dong xie qin bu du bie, nga zui pyo ki pe ge la yi ji qin bu yu, pyo ki tuan gu na dian ne, nyam le nye pe yong we, rwa yu jie som shi. Ran yu zhong ma zhu gui bie ju, chu nye bie chu zhang, lo san su zhim ki, nga zui nam chan ta, xin den mi ne jie nye xie pshu zi du su ne, qi tuan mi na ta, qi tuan nam chan jie nye zi du qie di, yu zhim qi bie xie pshu ta, ge len te xiong leng kye di, nam chan tuan gu qie gyo su dong wa ta, xin den mi na jik du yong gyu ru gui di dan ne, nye gu nye zhen ki le ge pyo zhe, yun du lik su dong ju yin xie som shi.
2: 这次你松宁看看出人群中西凶三九兄弟抗议我就爱吃过骨醋去母鸡去吞作为三九镇扎葱都天西不错呢我就批人不要他空别当玩儿特别冲这趟我就爱人去吃过去这月内最我最能吃宁吃冲给西凶去冲击选别为米小会冰去我就批村土宁吃冲给西凶去三九团给吉林堂国统球接到你给叫松菜来我给堂 六千年八千给钱给啥给俺心不疼点价给诺了马泽东菜国统球国家国家研堂六千年八千给钱你这顿餐你俺心吧孟翠开空说开门为国统球俺给十几十顿餐十几当晚给看西边特色组队切别明菜看江阳给顿车图立板希门来也国为领地说给及从头堂长前镇都普通超过国内年尾没得看玩儿去中午堂别的色度 请约结送别我将爱人宁志崇克尔克特朗钱不出了命的修顿内皮切克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔巴汤给克尔 江永基团列三队空别动位托斯春秋给客皮昨年健康人的预国民事春秋培育先律重启他重叠间比赛间期托斯春秋江永基不谈空别动位给举国以文别亏尊令借钱的宁提团为他团不谈